0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: तास औरे रेडियो अमन।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
3: रखे आपको बाखबर, हर खबर से खबर वो जो आपके इल्म में लाना जरूरी है। रेडियो अमन नेटवर्क, जन रंग अम।
0: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: समय कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहाब रेडियो अमन 88.4 करक। छोड़ दिया दिल को यूं
1: बहना। कुला तखुनन परिख्तियख कुल इखकारी
2: अस्माख कुले बवली नखकारम चिकला नमी सिफात पिटिक्रीम इस्तेमाल अवल शुरू कर दी जमा द मखना द दने द गुना तरसीरी और द मख तुरवाली बिल्कुल खत्म शवी दी
1: वही अल्लाह दुमरा जर सिंगा
2: अस्माख सिफात पिटिक्रीम यो हर्बल और मायरी प्रोडक्ट दी चे 5 दिन इस्तेमाल अवल सरा जमा द मखना डोरे मसले खत्म शवी
1: वाह ब्याह जहम गणम च जमा मख ता परेशान खैस्ते खुला उस दारा तो आया जी सिफात ब्यूटी क्रीम बंगता चिरत मिलवेगी
2: सिफात ब्यूटी क्रीम बस्ता सुता हर कॉस्मेटिक्स इन जनरल स्टोर की आसानी तरह मिलवेगी।

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवान रंग अमन।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: करते हैं।
1: गली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
4: इट्स 9 o'clock। आवरली टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय रेडियो अमन। जॉन रंग अमन।

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवान रंग अमन।

और शो बिल्कुल ठीक सर एक बजे पर सर और एक बजे पर साइडो एक बजे पर बिल्कुल सुधर सर चारी भी एक बजे पर चेहरे तेरे मना मिस सर वो से और प्रोग्राम ना खानती ना मास चौखल पदा पदा का सर अगर मासा हर सहर हद है कना और सबो मा टाइम हद है कना और नन सिकिम कना बीजीएम से शेडर गाना दर मना और वो शेडर सिकिम कना खानती ना मास ओ जाने खले

0: वही
1: पता नजा नीड़व के मन वक्त बला स्वतंत्रता ना
0: जमाना फैसले भाई जमाना सिबिए पोते न्यूज टेमर फर फिर न्यूज नंबर डायरेक्ट बिहार में खेर देते दोबारा क्या लोग इस खबर आंदो
1: किस्मत
0: लाता हूँ यार समाना दे काल कावले यो जहान सबेर वजीर यो जहान मना दे काल कावले और सर किमने न्यूज टेमर सर फिर आशो
2: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.

समय सुनाते हैं हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपके दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 87.4 पर आपके

जी ना अन्न पोई गम चिकला बोले तुमरा रे दर्द के भी गले में दर्द के भी बार बार हो तुमरा شدید दर्द चतन दिखड़े हो हम डेरा मना ना करना प्रोग्राम कर रहे हम खत्म दे इंशाल्लाह को जून दो वक्त तो वक्त हालात वाकियात तो या बताओ उस तरफ बल प्रोग्राम के हाजिरी का मात्र हगा वक्त अखपल कुर्बा मजार पखपल दुआगान की याद साथे हर चरते चाहिए खाद आबाद खुशहालो बरियालो से दुलवी अल्लाह पामान।

हाँ जी जनाब, नुदा दखो जिफा कंपनी शिफा प्रोडक्ट थी जिसे तुसे तवशाया हो दाओ तुसे जरूर इस्तेमाल होई जदे प्रोडक्ट ना फायदा हो फले दा प्रोडक्ट देर बेहतरीन प्रोडक्ट थी जी बस जेड कलर शोधर तमिला विजी गोल्डन कलर ये दाए हाँ।

जी शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान पर करक शिफा इज ग्रेट शॉपिंग सेंटर उमरदीन प्लाजा करक शिदर तमिल आयु श्री इमारात शॉपिंग सेंटर उमरदीन प्लाजा करक अब्दुल रहमान होलसेल डीलर कमर्शियल मार्केट करक कमाल गारमेंट्स बेल मुकाबिल यूबीएल बैंक करक दाऊद गारमेंट्स बेल मुकाबिल यूबीएल बैंक करक शहजाद गारमेंट्स करक ममून सुपर स्टोर चाइना प्लाजा करक हाजी फारूक करक।

आदिल सुपर स्टोर जेल चौक कर नवाब सुपर स्टोर जेल चौक कर और कॉस्मेटिक्स एंड गिफ्ट सेंटर हाजी जरबाद शाह प्लाजा सब्जी मंडी कर अंबेरी कला शह आबेद खुशबू महल अंबेरी कला और उषा शॉपिंग सेंटर अंबेरी कला टेरी शे मुनीर कॉस्मेटिक्स दुकान नंबर 7 गली नंबर 2 शनकी अड्डा टेरी लतमर से मामन कॉस्मेटिक्स नवाब मार्केट से सजाद लतमर से तारिक कॉस्मेटिक्स लतमर आओ जनाब और तख्ते नसरती से लबीब कॉस्मेटिक काशिफ सुपर स्टोर तख्ते नसरती फहीम होलसेल डीलर तख्ते नसरती।

मीठा हिल से दुबई शॉपिंग सेंटर मीठा जीएसके शॉपिंग सेंटर मीठा हिल के जी मेविस बिल्कुल देखो काल अटेंड शो है वो काल देखट शो है ढेरा ढेरा मनना छोटी मेविस और जनाब मंगल मिला शेर रहमानुल्लाह मंगल मिला मौलाना अब्दुल खालिक मंगल मिला हमीदान चौक से फाइव स्टार बेकरी हमीदान चौक जैन मार्ट हमीदान चौक नसीब होलसेल हमीदान चौक डुमेल से सदफ कॉस्मेटिक्स डुमेल मेहताब कॉस्मेटिक्स डुमेल हनीफ कॉस्मेटिक्स डुमेल हामिद आमिर बेकरी अजीम कलर रोड डुमेल हाफिज आमिर बेकरी लिंक रोड रजाशाह कॉस्मेटिक्स लिंक रोड बनु शे हाफिज जहीर ट्रेडर शोएब मार्केट जानजेब गली बनु आओ देने इलावा अहमद मिल्क शॉप चिकिम दे जनाब दलता हम बनु के शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान नजीर ट्रेडर अंदरून लेके गेट बनु शवाल जनरल स्टोर दरियाहान जनरल स्टोर उस्मान जनरल स्टोर दा अंदरून लकी गेट बनु शिदी जी और बाबा शॉपिंग सेंटर चिकिम दे गर्दनाली गली बनु बरकत कॉस्मेटिक्स गर्दनाली गली बनु आओ नवरंग शे फ्रेश वे बिक रहे नवरंग अजम शॉपिंग सेंटर नवरंग शेर पंजाब बेकरी नवरंग लुकमान जनरल स्टोर मनियारी गली नवरंग जहांगीर मनियारी गली नवरंग हाजी अहमद शाह मनियारी गली नवरंग गांडी चौक से शिफा अल शिफा बिक्री दू नाव गांडी चौक से और लकी मरवत से हजरत अली लकी मरवत शरीफ होलसेल लकी मरवत अबासीन शॉपिंग सेंटर लकी मरवत दिने लवा शबाज खेल से सिराज जनरल स्टोर शबाज खेल एहसान मेडिकल स्टोर शबाज खेल पेजू से एहसान कॉस्मेटिक्स पेजू मिसबाह कश्मीरी बिक्री तातर खेल मिसबाह कश्मीरी बिक्री गजनी खेल मिसबाह कश्मीर बिक्री तजूड़ी और एकरा बेकरी गंबिला असलम बेकरी गंबिला एहसान बेकरी गंडी ककई से रफी जान कॉस्मेटिक असमत ककी रहीमुल्ला कॉस्मेटिक्स राम शफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान टोल प्रोडक्ट में लगे बकाहेल से नसीम आमिर बेकरी बकाहेल दुबई कॉस्मेटिक्स बकाहेल मिरली से अमीन कॉस्मेटिक लाची मार्केट मिरली याकूब कॉस्मेटिक लाची मार्केट मिरली जासिम भाई लाची मार्केट मिरली लोलू शॉपिंग सेंटर तारिक मार्केट मिरली अंदलीब पतासी अडा मिरली सलाहुद्दीन इदक बजूर अफगान कॉस्मेटिक खदी बजूर और मीरान शाह से रजा शाह कॉस्मेटिक्स तारिक कॉस्मेटिक्स और जाहिद द पाकिस्तान मार्केट मीरान शाह से दी शारजा जनरल स्टोर मीरान शाह प्लाजा से दुसली शे मुजीब कॉस्मेटिक्स दुसली अहमद नास दुसली रजमक से आमिर शाहजेब जनरल स्टोर राजमक शाहजक जनरल स्टोर राजमक और इब्राहिम जनरल स्टोर राजमक से दृता में लावी दीजिए हुजीफा कंपनी टोल प्रोग्राम टाइम सर तवर से مزید معلومات کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3436 بندوں کو سائن کریں اور کمونہ اخلے 0330-0344-717 دس راج شہید خان تویر کی اجازت دلوی اللہ فام

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 करक आपके हर लम्हे।

तालीम एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Nabi Sardar Zaman. मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
3: हर कदम दिखाऊं सयो
4: छोड़ फिक्रे दुनिया
5: की। गुलोनी होरिस्ता पुंदे हमाह के डेरी ज्यादा हारा बेवेनु दुमरजर सिंगर टिक्शुले। यह होरेन होरे माह हमाह के डेरो कपनोय क्रिक्री में इस्तेमाल करल हुमा ते ही सो रिजल्ट और फायदा न कड़ारा। अव चिकला माँ उरुसा शॉपिंग सेंटर ना जान द पारा इश्मा क्रिक्रीम रावड़ल नुमा ते डेर जबरदस्त रिजल्ट राको।
6: राजा गुलोनी हो रे जय हम जान द पारा रावड़म इश्मा क्रिक्रीम।
5: कतासो हम वाड़ो चिमुंगा पुंदे सफा सुथरा और हाइस्ते शी नयो जल जरूरी

0: Τώρα μαζί με τζι, τάρτο βγαίνει για πασαπάρ, είτε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να πασαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χωστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με τζι, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ, βορειβή. Κούρσε αξάρ γκυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχά να τα γκυλε με χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ, βορειβή σε ρικρέτη, ω τον κούρβαλα να χωστούλτι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो उदार तो ये या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पर युक्सले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म कवी जाखर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دم رکشلای ریزلت یا دای دارتا اویه چه داو موتا چیرتا ملویشی
1: تار کنا داو تو دفا بانی گل شه اندرون لکی گیرد جانزه بگاله پر شوی مارکی شه دیشما من دیستیبیوتر حافظ دیر سیب سار او درتا ملویشی

अच्छा जी, नंबर बिल्कुल देते हैं, नंबर दे 0345-933-2580, यानी कि 0345-933-2580। दे बने हम मैसेज कवर छे और दिन लो बल नंबर हाँ दे 0331-52-65-340, यानी कि 0331-52-65-340। दे नंबर बने हम मैसेज के वाले 0331-52-65-340।

अच्छा जी बिल्कुल थोड़ा शबाद लस बजे टाइम दाए नो बिल्कुल डेर मलगरी वदा सी वी के ना उस थोड़ा बिल करो भाई अक्सर बस थोड़ा सीधा सी के डेर मलगरी जमा सी बैठक के ब्या हलवा चुकम दे तैयार की या दिन बल दा सी चावल तैयार की बल से तैयार की के ना या दिन वदा सी दुकान नहीं बाजार न सो रुख ली बस मलगरी जमा भी के ना बस चाय हम पखवी नो वदा सी मलगरी के ना गपशप शुरू है डेर याद फोन के भी چکم بابا دے گا نا ڈگر نے چکم کال کبھی آگے بات ترماس چکم نے جڑ کر ترماس ورنہ موت سو

0: खजिजुल व्याहरकले ठूलो मीना बालु त खजी एमएसडी हुँदा चाहिँ खुसाला खुसाला देखेन खजी एमएसडी हुँदा चाहिँ केन छ मतलब हुँदा चाहिँ खबर मखे त रोशी केन खजी सही कॉल से मिले गुरगाम की किसी जी कॉल मैंने बरसों को दिखे मैं जना दी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: दसो खबर के भी कम से नाम
1: रायतुला
0: हटक द बुरगाम के हर के ले बखेर राख ले अल्हम्दुलिल्लाह खैर खरियत से सियात शदाई और दिशाते रगड़ा बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह दस इस मोत दस इस चढ़ाई चढ़ाई लगे जी आओ शत पर दस व्यंज इस चढ़ाई चढ़ाई लगे जी
1: अच्छा
0: अच्छा सही नो सदे ओ खड़ल पके सदे नो खड़ल पके

अच्छा जी सही ठीक शब्द कसद संदर्भ मत मिला उसी के ना बिल्कुल इधर तब लेके आओ डेरा डेरा मने ना यो जहान मने ना नेक्स्ट जियान और तुसे डेरा मने ना की प्रोग्राम के नेक्स्ट मैसेज कर दे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम तारिक सर बखेर रोगले पता तक का तुरश पाश सरंगे ये बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा जी आई एम गुलाई फ्रॉम सुष्ता कक्की विच लोई सड़े से डेरा जी तो मने ना सलाम टू जलाल हानी वफाम मरिया अरमानी अरमान एनशा खान यमुना खान सद वफाम वजीहा जीमल रोहिन आर्मा आमरा फरिश्ता डॉक्टर मनोर सोनियान रोशी खान एम एस जी ममुजान था स्पेशल सलाम ओके आई एम गुलाई फ्रॉम सुष्ता कक्की लोई सड़े से जी डेरा मनना लोहिया खासा से यो जहान मनना दिलो नेक्स्ट इस्लाम निजर से बस संग ये उमर फ्रॉम डगर नरे डेरा जी तो मनना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक तुझे दुआ गाने दी यो जहान मनना कभी फारूक के फिफ्टी वाला तारीख से वो सदा सलामत रहो रास के खी अख्तर नवाज लला एम एस जी तप चलो चलो सलाम वालेकुम असलम डेर अजियत मनना यो जहान मनना थैंक यू फारूक भाई डेरा डेरा मनना इट्स मी तरहान अस्सलाम वालेकुम तारिक खान क्या हाल चाल है कैसे हैं आप शोला जवाब है वेलकम टू ऑल स्वीट फ्रेंड्स मैं अगेन तरहान सुबह दोपहर अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे आबाद रखे और कामयाब करें ग्रेट दादी को स्पेशल सलाम वालेकुम सलाम ढेर अजियत मनना और ठोलो तई सलाम मिली दियो जहान मनना तारा खान रुमान डोमेल ने मैसेज करे दई हुए खफा ये अल्लाह दिखिर वकी बिल्कुल हम खफकी जो सईद रुमान ढेर ढेर मनना वैसे अस्सलाम वालेकुम मशवीर तारिक भाई कैसे हो माशाल्लाह जबरदस्त प्रोग्राम बहुत टाइम बाद इट्स मी माही अटैक फ्रॉम ब्यूटीफुल करक तारिक भाई वेलकम टू बनता है मेरा सलाम टू ऑल लिसनर्स स्पेशल राज भाई को डेरा मरा ना माही अटैक बस डेट टाइम बाद मैसेज करे दे नो प्रोग्राम की तो वेलकम हर करे यही यो जहान मरा ना माही अटैक अगेन माही अटक तारिक भाई आज तो आपने पसंद का सॉन्ग आज अपने पसंद का सॉन्ग प्ले करो मेरी फरमाइश पर भाई स्पेशल सलाम एंड आई मिस यू ग्रेट मलिका आयशा एंड सारा सही डेरा मनना बस अंदर बिल्कुल पाखिर की दर तप लेगा टिक्शो पाखिर की बहन दर तप लेगा ख्वागे नमक की बा सवित भी ना चिल की शांति डोल वोर भी जख बाबा चुकम ने काल करने वाला केवल चमो तो डोल प्लेगा भाई नो बाबा गान हो सो बिल्कुल हन हफ कहो टिक्शो और डोल वोर तो बिल्कुल वर तप लेगा हो लश की शांति वरुस टिक्शो डोल बबिल कर जाओ बाबा दे बरा जरूर प्लेगा ख्वागे नमक की दस मैसेज मेरा सलाम तारिक खान सरंग ये यस्मीन अनमोल टांग ना शो रता बीजेम खिस्ता दे चाय रहा था तैयार हूँ ठोल मुसफर तो सलाम सही बचाई दे तो तैयार कची खो मुलोट सी वैसे चलो मुसफर तो सलाम खास कर तो सलोम पखपल कली के मुसाफर है माशाल्लाह डेरा मनना यास्मीन अनमोल मैसेज के वाले लो या खास छे खुदरत हो जे टांग था वो सफा देर सी और शेर जुमान हो मैसेज करे दे सलोमी विली दी वालेकुम अस्सलाम तो से हो डेरा मनना के भी प्रोग्राम के मैसेज बुक हो नेक्स्ट हेलो हाय सुपरमैन वेलकम टू द शो तबीयत कैसा है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक अच्छा शो सुपर से भी ऊपर है मैं एक हफ्ते बाद आपका
आपकी वॉइस मैंने आपकी वॉइस मैंने आपका वॉइस सुन लिया माशाल्लाह बहुत खुश लग रही हूँ। हाँ बिल्कुल दा खबर ठीक था और दा सिलेश की स्टडी स्टडी लगे जो स्टडी तक पर जोन पता लगी जी ना जी वर्ष स्टडी बीजी ही ना बेखा मगा स्टडी लगी स्टडी जोन वर्ता लगी जी खुश लग रहे हो ऐसा खुश खुश रहा करो कल तबीयत ठीक नहीं थी फिर सो गई थी शो नहीं सुना। अरे सब से पहले मुबारक हो न्यू बैकग्राउंड की। अरे ये बर्थडे पे अच्छा जी हाँ जी डेरा मना ना अगेन डॉक्टर ऐसा मशहूर भाई सुम जारा हटक मीस रोशनी और फरिश्ता जलाल सोनिया मनत रोमी चात आयशा इल्मा होमेमा छोटी हिना मजलूम हटक तारा खान एंड सबको सलाम और ताता स्पेशल सलाम डे रजिया था मना ना वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर इज अगेन सुपरमैन डेरा जबरदस्त खबर दे उकड़ा हर इंसान ता बचार दो छे खपल कोशिश मेहनत उकी खपल खपल बांधे छे पैसे उगटे आगा लगवले लगवलो बल शांति मजा आदा। बिल्कुल सही रहा खबर ठीक तो बल इंसान वले पैसे इंसान भी एहसान भी अच्छा एहसान भी तरीखान सोख का रोजगार नक भी चिकला जिम्मेदारी पेरोशी ब्या खपला स्टार्ट की इन्हें पखपला बने चारे स्टार्ट किया रहे तरीखान भाई का खपला के देर खबी जने ब्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही खबर डेरा मने ना जबरदस्त खबर है लिख ली दो वकील खबर बिल्कुल ठीक तो यो जहान मनन कभी हाजी नौ दस कभी छे बाबा दे पर लश की शांति डोल प्ले कभी के ना टिक्शा और ये दिन लवा मिजडी मिटाई हो बिल्कुल मोत मखता ऐसी दो ना टिक्शा नौ जो आए आबे हजुर लश की शांति मतलब सिवर तभी लश की शांति भाई ओखरा टिक्शा नौ तो सुधा डोल हाँ वो रोई बाबा वो तो खोना में ना डोल बिल्कुल वोर वशा जी नौ द डोल वोर भी नो एंजॉय कभी दगर डोल और दे डोल न बाद ब्याज़र सी

हाँ जी बिल्कुल ढोल मोर बेदा बाबा बाजी को ढोल और बेदल अभी कहना बदा ढोल तुम रेडी रोशा बाबा से ना जी गोरा प्रेन हो जी क्या बाबा जी गोरा थरक बे ढोल लेकर आगे आगे दे वजी ना प्रे बताई दाई ना बाबा डेरे मना ना जी मैसेज जरूर से मिलो ब्याह बदा ना गोड़ा इजाजत ठीक सो मैन बा वक्ती इजाजत देना खोला वो मैसेज डिटेल्स यू थी सब सिर्फ और सिर्फ हम यो मैसेज पकेश मिला हूँ अच्छा जी मैसेज कर दे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम कैसे हो शी इज वेरी स्वीट एंड नाइस बिल्कुल आपकी तरह ऐसे कभी कभी हम मासूम लिस्टर को भी मैसेज करने का मौका दिया कर अच्छा जी फरिश्ता मैसेज करे बनो ना डेरा मनाना फरिश्ता मैसेज को बोले खूबियां इतनी तो नहीं कि किसी के दिल में घर बना सके लेकिन कुछ ऐसे पल जरूर छोड़ जाएंगे कि बोलना आसान न होगा डेरा मनाना फरिश्ता लोया खासा जी आपको पता है शो स्टार्ट होने से पहले मैंने दुआ की कि आज फ्री मैसेजेस हों वाह जी वाह क्या बात है और फिर आपने कह भी दिया कि आज फ्री मैसेजेस होंगे मेरी दुआ कबूल हो गई सच्ची ओके सलाम टू मिस जी मराहल आयशा हटक आयशा हान रोमी हटक मेरल हानी मैं सहानी मानो सोनिहान जनत वजीर जरकेश हवेद जोहा वजीर रोशी खान सनम वानी एंड आपको स्पेशल सलाम वालेकुम अस्सलाम डेरा मनाना मैसेजेस इट इज यूथ कड़ी हो सिर्फ आयो मैसेज मिलाओ हो पकी जो बिल्कुल नजर के टाइम दे खत्म शुई और सुबह देना गोड़ा जैसा ठीक सर हो सिर्फ द मैसेज सर सर और रफिया वजीर हम मैसेज कर दे मजीद असलाम वेली दी वालेकुम असलाम डेरे मनाना वैसे तो सलाम वालेकुम असलाम डेरा मनाना जरूर से मिलाओ टाइम दे रहा खत्म शुभ मोबाइल से नन्नू पेट फा फिरती मंदिर था मैसेजेस का मो खुदा होनन तो ऑफिशियल नंबर माने मैसेज शामिल वे आओ के नंबर नन गुरा फ्री टेक्स्ट के वाले चाहिए